0: ऐसे सुन प्रताप ते दंड बड़े प्रताप तीन लोग जाय जाय करे रे नाम साहब सोहरा सगल द्वार को छाड़ के कहो द्वारो द्वार बाहे गए के लाज सु गोविंद स्वर धोरा राज करेगा खालसा आके रह न कोए फार बरस मिलेंगे बचे सुन दोरा उठ के सभा मिले छकी कर कूड़ा पासा लंका बाजे फते का नवे अवतार चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सरदार सरजित दुकाल करुणा से दयालु स्वरूप सदा संगे आप भंगंग
1: देख एको फजल उठ से बिदरे आप तो

जय कोट इंद्र निपार, कई ब्रह्म बिसन बेचार, कई राम कृष्ण रसूल, बिन भगत को न कबूल। कई सिंध बिंध नगेंद्र, कई मछ कछ फनिंद्र।

वेद भेद कहांत कई शास्त्र से मृद बखान कहूं कथत ही सो पुराण। कई अग्नहोत्र करंत कई उर्ध ताप दुरंत कई उर्ध बाहु संन्यास।

प्रसाद कबित खूक मल हरि गज गदहा विभूत दारि गिद्धुआ मसान बास कर भी करत है। खूक मठ बास लंग डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन साधे मरत है। बिंद के सदैया दाहीज की बटैया देत बंदरा सदीव पाए नांगई फिरत है। अंगना अधीन कांप क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छिन्न कैसे के तरत है। भूत बन चारि छित छौना सब दूता धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। त्रिण के भछैया धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंछी की बडैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है। जेते बड ज्ञानी तिन्नो जानी पब खानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कहे नभ के उड़ैया सोचरैया कह बखानिये। फल के भजैया ताहे बांधरी गजैया कहे आद सफिरैया तैत भूत के पछानिये। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भछैया सोच को रसम मानिये। सूरज सिवैया ताहे कौल की बडाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिये। नारायण कछ मछ दिंदुआ कहत सब कौल नाभ कौल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब दिन जारी निखि के सनाम के महत लहियत है। माधव भवर ओ टिर को कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है। मूढ़ रूढ़ पीट तन गूढ़ता को भेद पावे भूज तन ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल वैरिशाल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है। जो कि जटाधारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है। न्योली गरम जल होम पावक पवन होम अधमुख एक पाए ठांडे न पहत है। मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद योग तेव नेत नेत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव कर ही करत है। चंद्रमात सीतरण न सूर से तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से नेद चारि सनत कुमार सी तपस्या अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा अर विषन के तेद यो पुराण के तिमृत समूहन के होय होय बिताए है। मोहन दी मदार किते अश्विनी कुमार किते अंशावतार किते काल बस भय है। पीरे ओ पिकाबर किते गन ना परत ते भूमि ही तह के फिर भूमि ही मिलाए है। जो कि जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड्डो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तोप जी कपट वेश पोष दी अनेक दानी वावत है। शीस को कह भयो मल्ल जो पे काटत अनेक दंड सोतन डंडोत अस टांग अत तीस को कह भयो रुक जो बेटार रहे उर्द मुख मान तेना मुंड ने ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश को। शीस पट कद जाके कान में खजूरा दस मुंड छट कद मित्र पुत्र हूँ के शोक सौ आंख को चरैया फल फूल को भचैया सदा बन को भ्रमिया और दूसरो न बोक सौ कहा भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्षन सो माटी को भचैया बोल पूछ लीज जोग सौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ। नाचुई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करुई करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। वाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे काग और चील देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में नहु जलीन भावना यकीन दीन कैसे के तरत है। जैसे एक सौंग कहूँ जोगी या पराग बन कब हूँ संन्यास भेष बन के दिखावई। कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पैला कावे बारी कहूँ दंड धारी हो के लोगन भ्रमावई। कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई। पांच बार की दर पुकार पर शीतकाल गुंचर ओ गदह अनेक दा पुकार ही। कह भय जो पकल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टा गुठारन सो मार ही।
कहां भयो फांसी डार बूढ़ो जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूढ़ ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहित जो पे पाइये अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के किए जो पे पायत अजाप देव बूदना सदीव तुही उचरत है नब के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल अकाश बंशी डोल वो करत है आग में जरत गतराण की परत कर पताल के पास के भुज

साफी मानस की जात सब एक पहचान बो। करता करीम सोई रास करहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो। एक ही के सेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो। देहुरा मसीद सोई पूजा निवाज ओई मान सब एक बयान एक को फरमाओ है। देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यार न्यार देशन के भेद को प्रभाव है। एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बाद आतस ओ आव कोर लाओ है। अल्लाह अफेक सोई पुरान ओ कुरान ओई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाओ है। जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में विलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्वरूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केत कछ मच केत उनको करत फच केत अच वच हो पच उड़ जाएंगे। केत नव बीज अच पच को करेंगे फच केत प्रतच हो बचाए खाए जाएंगे। जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे। तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंगवासी कित मदीना मक्का निवासी कित उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हर देवता विरोध हर दानव वड्डे बोध हर बोधक प्रबोध हर जापसी घस हर चंदन लगाए हर चुआचार भूज हर पाहन चढ़ाए हर लापसी गाह हर गोरन मनाए हर मणि मटली हर भीतन लगाए हर छापसी गाय हर गंधर्व बजाए हर किन्नर सब बच हर पंडित तपन।

परे अंग परा परम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग छय आदत्वय विनाशी न जातंग न पातंग न रूपंग न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे। किते कृष्ण से कीट कोटे उपाये उसारे गड़े फेर मिटे बनाए अगाधे अभयाद अद्वय विनाशी परे अंग परा परम पूरण प्रकाशी न आदंग न व्याधंग गाधंग स्वरूपे अखंड प्रतापाद अक्षय विभूते न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग न सनेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे स्वभूते भविखे भवाने अचित्रे। नारायंग नरंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग वेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो निय छयाद अद्वय जोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न वर्भंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवंग सदा सिद्ध।

करम के हरम जाने कहूँ, धर्म के कर्म के भरम माने कहूँ, चार चेष्टा कहूँ चित्र रूपं कहूँ, परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ, नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ, औषधि रोग के सुख सुखं कहूँ, देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ, जाछ गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ, राजसी सात के तामसी हो कहूँ, जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ, रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ, भूम के भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ, देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ, जज विद्या धरे मानवी हो कहूँ, राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ, सृष्टि के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूँ, वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी कहूँ, कूक की काव कथा कहानी कहूँ, अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ, मद्र वाणी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ, वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ, चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं कहूँ, परम पुराण को पार पावे कहूँ, बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ, शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ, वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ, ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ, नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ, जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ, रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ, राजसाजं कहूँ राजरीतं कहूँ, पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ, आरबी तोर की पारसी हो कहूँ, पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ, देश भाख्या कहूँ देववाणी कहूँ, राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ, मंत्र

कहो कहो छैल छाला धरे छत्र धारी कहूँ राज साजंग थे राजाधिकारी। नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता छेदी अक्षय आद आद विधाता न त्रस्तंग न ग्रस्तंग।

जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योतबान जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम धाम नहीं वर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध।

कहूँ वेद रीत कहूँ रिद नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत सास्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार। कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदास पायतन अंत कई गर्त कोट विद्या विचार नहीं तदव दृष्ट देख मुरार बिन भगत सकत नहीं परत।

छूतम तंगन गाध ब्यादा नादक तंगन खेद अभेद छेद नरंग जे चार चतुर्देश चक्र फिरंग जे राग नरंग नरेख रुगंग जे सोगन भोगन जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जछ उजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज प्रतंग जय पार न पावत पूर्मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपत वेद पुराण सब।

है न रंग है न मान है न मौत है न साख है न संग है न जज है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साहु है न साहु को कुमार है न ने है न गे है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न तात है न माद है अख्याल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न रूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न शोक है न भेद है न फंड है न अंग है न रंग है न संग है न साध है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीत है न सोच है न ग्राम है न काम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैद है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैग है न भेग है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभरम है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेक है बलि अरूप राग रंग है न द्वैग है न भेग है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानिए अभूम अभिज है सदा अचिज तेज मानिए न आद है न व्याद है अगाध रूप देखिए अदोख है अदाग है अच्छे प्रताप देखिए न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज से विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोहकार है न आद है न गाद है न व्याद को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेखरार है न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा से दसपति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आद जे बड़े तपस्त भी बिसेखी है बेअंत बेअंत बेअंत को करंत बाट पेखी है अगाध आद देव की अनाद बात मानी है न जात पात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानी है सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रहे तुरंत द्रोह देह के अनंत

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देव खंड भूम का जले थले मह जपत जाप मंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देव पा श्री पद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्न दाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्याज करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावई शिव रुद्र ओमुख चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत बे मुख चार आद अंत न मध जाको भूत भव भवान सत द्वापर तृतीया कल जुग चतुर काल प्रधान ध्याय ध्याय थके वहां मन गाय गंधर्व पार हर हर थके सब नहीं पाई तह पार नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोत सोत थके महासुर पायो नह पार स्व प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचर्यो मत्स्यो वैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल पित तैन दोहरा को आत्मा स्वरूप है कहा श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कह जी तब कह मरण है कौन सुरक कह नरक को सुगुड़ा को मूढ़ता कहा तरक अब तरक दोहरा को निंदा जस है कवन कवन बाप कह धर्म कवन जो को भोग है कवन करम बाप करम दोहरा कहो ससम का सो कह दम को कहा कहंत को सूरा दाता कवन कहो तंत को मंत दोहरा कहा रंग राजा कवन हरक शोक है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत्म है तवन दोहरा कवन दृष्ट को पुष्ट है कहा सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा कहाँ कर्म को कर्म है कहाँ भ्रम को नाश कहाँ चितन की चेष्टा कहाँ

असुर मारण पति उदारण नरक निवारण गूढ़ कते अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय होसी मैं खासुर मर्दन रमक बर्दन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन भूष्ट उदंडन रूप ते चंडा सुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र

डावरू डवंगे भवर भवंगे हुजाफरंगे तेज बरंग लंगुड़िया फंदे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत चमके हु खंड दमके अतिथि झमके फुंक फनंग जय जय हु सीमा खासुर मर्दन रमक वर्दन दैत जिनंग चंडा सुर चंडन मुंड में मुंडन खंडे अखंडन खून खिते दामरी दमंगण धुजा फरंकण फणी फुंकारण ज्योत जिते सरदार विपर खंड दुष्ट प्रकर खंड पुष्ट प्रहर खंड दुष्ट मथे जय जय हो सी मै खासुर मर्दन भूमा कासल उर्दे दामनी प्रकाशन सुषम निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्त

खासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघोक निवारण दुष्ट प्रचारण सृष्ट उवारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शास्त्र प्रहारण साध मते सहती सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय हो सीमा खासुर मर्दन भूमा काश पताल जलंग चाचर चमकार चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्राप मथे दाढ़ व्रतंते जोग जयंते मरुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हो सीमा खासुर मर्दन भरम विनाशन धरम तुझे घुंगुरु घमंकण शस्त्र झमंकण फणियर फुंकारण धनम तुझे अष्टाढ़ प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुध सन्नाहे अगमथा हे एक वृते जय जय हो सी मै खासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुर बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन वृत मथे कावरु कुमार अधम उधारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण पिथल तले जय जय हो सी सवठौर निवासन बाय पताल काजन ले संकटे निवारण दम उदाहरण तेज प्रकर खण तुंद वेद हुदोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाद अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हो सी शस्त्र प्रकर खण आद नील अगाद अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तेज सरे कर कसा कुठारे नर

घंट का बिराजे रुण झुण बाजे ब्रह्म बाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे किल बिक भाजे सखो बराजे मध उरंग दुर्जन दल दज्जे मंथन रिझे सब न भजे रूह रणन जय जय हो सीमा का सुरवर्धन चंड चक्रधन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर वृते धूमराज विधुंसन प्रलय पजुंसन सुख जग विधुंसन शुद्ध मते जाल पा जयंती शत्रु मथंती दुष्ट व्रताहन गाढ़ मते जय जय हो सी मै खा सुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियान खतंगी अब भंगी याद अनंगी अगाध गते ब्रिडलाज बिहंडन चुर दंडन तेज व्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पति दोधारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय हो सी मै खा सुर मर्दन विश्व विधुंसन सृष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तरनासे ज्योत प्रकाशे तुलबले दानवी प्रकट खंड सर्वर वर

दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत व्रत क्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना हे दुष्ट व्रता हे अर्ध लगा हे दुख हरे गंजन।

काल कटे। चंद्रानंचार नरक निवारे, वत दो धारे मुंड मथे। जय जय हुसी वै खा सुर मर्दन, धूम्र विदुन सन आद कथे। रक्ता सुर मर्दन चंड चक्र दन, दान वर्दन बिडाल मदे। सरधार विवरखन दुर्जन धरखन, तुलम रखन धरम तुझे। धूम्राज विदुन सन।

पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमाल ध्यावे घोर कर दिजि गुण गावे तेरे नाम है। जोगि जोग साधे बौन साधना की देख बांधे आरभ के अरभि आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी मारे कंधारी को रेसी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मरटा मंगेली तेरी मान सो तपस्या करे।

देश के मंगेली वीर भंग से बुंदेले बाप बुंज को मलत है। गोखा गुण गावे जिन मचीन के शीश ने आवे ते बते थे आए दुख दे के दलत है। जिन्हें तो है ध्यायो तिन पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सुम फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश कंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहु पे न दीन साध दीन कहियत है।

0: ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ
1: ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
0: یہ انمان ہے کہ 30 سال کے بعد وہی پیارے سلطان کو تمام ہوئے پیارے مہاراج نے کیا انہوں نے کول جے گیا بولے دیکھو اپنی جانا ہے ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਜਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫੜਾ ਗੋਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਚੱਲ ਤੇ ਸੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਵਾਈ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਦੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰਾ ਡੋਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਲਮਾਨ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾਂਦੇ ਪੈਸਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਆਦਿ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਈਸ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਤਾ
1: ਸਤਿ ਪਿਆਰਿਓ
0: बस फलाने कोल जेड़ा भी राजा होएगा ओदे कोल चल जाओ। ए बंदा जे अपा भी होंदे ते अपा ने कहना ना महाराज ओ की गल करदे, मैनू अज दी जिन्नी माया बनदी है आही आप जी दे नू भावें घटाउणा घटा करके दे दिओ, जादी लालच नहीं महाराज ओ भी मिल गई बहुत है। कल दा किहने वेख्या लेकिन ओ पठान पुत जेड़ा प्यारे ओ मन विच विश्वास है भावना है कि सतगुरु महाराज गलत नहीं बोल सकते, जरूर एदे वेच मेरा ते मेरे परिवार दा मेरी पुश्तां दा भला हो जावेगा, मेरिया पुश्तां तर जाणगियां। ते एस करके उन्हें मान लिया, कहन लगा सद बचन सतगुरु जीओ
1: जब खालसा बिदते ओ भारी।
0: जदो खालसा पंथ जदो प्रगट होया
1: भयो राज ली नो रिप मारी,
0: जदो खालसे ने वैरी नू मारना कीता
1: तब सरदारन को डिग गयो। कहिंदे
0: उस वेले आही पठान पुत जड़ा बुढ़ा हो गया प्यारियो, ते इन्हां ने जा करके सिंघां दे कोल जड़े सरदार सी
1: धन गन सुख सो प्राप्त
0: ते भयो, जा करके 10-11 गुना ज्यादी वध जड़ी है माया जड़ी है जेड़ा 11,000 दे करीब सी ते तकरीबन प्यारे 1.25 लाख दे करीब दमड़ा उन्होंने उथों चुकना कीता।
1: संतत धनी विशाल भए है
0: ते ओदे नाल ओदी संतान जड़ी है ओ पठान दी, चलो ओ ता बुजुर्ग हो गया अंतम पड़ा दे विच आ गया होएगा, उस वेले की उम्र सी पता नहीं है प्यारियो, लेकिन ओदियां पुश्तां दियां पुश्तां तर गईयां। हुण हर कोई बंदे दी एक फितरत हुंदी है, आपां कहिंदे ना जी पैसा आपां कमाउंदे आं कादे लई जी अपने गुजर बसर दे लई, बंदा अपने गुजर बसर दे नाल नाल प्यारियो अपनी पीढ़ी जिहड़ी है अपने बच्चियां दी वधिया उना दे लई बंदे ज्यादा करके पैसा कमाउंदे। कहिंदे के चलो जी मैं तां औखा सौखा कढ लिया लेकिन मेरे आन वाली पीढ़ी जिहड़ी है उहनां नूं औखिया ही ना होवे, तगड़ा माल धन होवे उहनां दे कोल, तगड़ा इह सबब होवे खुल्ला उहनां दे कोल पैसा होवे, तां करके बंदे जिहड़े प्यारियो पैसा जोड़दे कादे लई के भाई मेरा पुत धी जिहड़ा उह खावेगा मेरी चौथी पीढ़ी पंजवीं पीढ़ी तक आ पैसा चलेगा। इस तरह प्यारियो आ पठान जिहड़ा है चलो ओदा तां जिस तरह रहा लेकिन ओदी अगलियां पीढ़ियां जिहड़ियां इन्ना पैसा गुरु के खालसे ने दिता ते ओ तर गईयां।
1: आदर सिंघन सबिन दई है
0: ते सिंघां ने ओदा मान भी कीता, ते देखो ए किन्नी वड्डी गल है प्यारियो, ते सिंघां दे मन दे विच भी गुरु महाराज जी दा बचन ए बचना दा सत्कार है। जे कोई प्यारियो बचन नहीं मनन वाला हुंदा उन्हें कह देना के पठान साहब एवें कोई भी लिखत बना के लैके आए गए असी नहीं मनदे आ, गुरु महाराज ने थोड़ी सानू दसिया ये गल ही नहीं हो सकती है, लेकिन सिंघां दा विश्वास है प्यारियो कि सतगुरु महाराज जी का बचन आपां ने नहीं मोड़ना, ता करके गुरु महाराज जी ने कई गुरु के सिखां नूं प्यारियो के ए हुक्मनामे जारी करके दिते, खास करके पीर बुद्धू शाह जी हो गया। मुसलमाना दे विच मैं दो नाम आप जी नूं दवां, एक ता पीर बुद्धू शाह जी ते गनी खां ते नबी खान, अज भी उहनां दे हुक्मनामे

देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एकै अवतार सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तुस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव गण को शिव गुण सुख दियो सतरण को पल मोह पद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चींटी ते कुंचर यस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जावुद करख करा कर तारा प्रजाधर तब देहे अपारा जब आकर

रज से तज कीनी उतभुज खान बहर रच दीनी काऊ फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत पाता सकल मलेच करो रण घाता जे इस दुजताओ शरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे पुरख जमन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताकि काल निकट नह हैं रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध घर मुँह सब होई दुष्ट छा छुए सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांसते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख तेरा खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दैल हो कुबारी सर्व ठौर मोहो सुहाई दुष्ट दोख ते लहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सबराता किलविक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री अवधुजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बाशत फल पावे सोई दुख ना तसै प्यापत कोई अड़

आधारो वाजे पंच शब्द तत घर सभाग घर सभाग शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते का।

सच्चे तेरे करने सर विचार, सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान, सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, सच्चे तुदा किल करोड़ सच्चे।

लगभग प्रतिरता सहजोग बेबाण लक्षुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लक्षुरति लग ज्ञान

प्रथम श्लोक कोति जय सकिया के सुलगा दो अन्न देवता पानी देवता विष्णु देवता नू पंजवा पाया करता हुआ पाक पवित्र पापी सुतन गड्डिया।